0: विद्यार्थी को पहिलो रोजाई विदेश सामुदायिक शिक्षा सदन
1: गैराकोट 5 नवलपुर।
0: थप जानकारी का लागि
1: सम्पर्क नम्बर
0: 9855516633
1: 9845486681
0: 9845486643। धन्यवाद।
2: लौ न सुन्नुस् न कोही छ वरिपरि लौ न कोही छ भने मेरो साथीले सर्कुलेट रोक्यो
3: के भयो बहिनी तपाईं

लौट के आया उड़ता पंछी नया हुआ आगाज, बरसों बाद भी देखो मेरी ट्रैक्टर से ऊंची आवाज।

0: BJ 淡见。विवाह पार्टी सेमिनार वा आरामदै बास र मिठो खानाका लागि गैंडाकोट फन पार्क गैंडाकोट नगरपालिका कार्यालय अगाडि गैंडाकोट 5 मोबाइल 9862124437।
1: अहिले रातिको 9 बज्यो।

0: Zoya FM 101.9 बगैचा एडवेंचर रिसोर्ट नेपालमै पहिलो रैम्ड अर्थ प्रविधिको रिसोर्ट
1: बगैचा एडवेंचर रिसोर्ट
0: 35 वर्ष पुरानो बगैचा भित्र संचालित बगैचा एडवेंचर रिसोर्ट जंगल सफारी को रोमांस सनडाउनर को सुनौलो सास थारू सांस्कृतिक नृत्य को साथ
1: बगैचा एडवेंचर रिसोर्ट
0: हॉर्स राइडिंग र अक्सकार्ट राइड को आनन्द लिन सकिने हाम्रा सेवाहरू अर्गानिक तथा

पान मुसो अक्कल डेराई त्यही मुसाको पानी मात्रै छुटौ सिन्दुर दुबो फुलमाला पूजौ गणेश वाला।